जना मिल भया आनंदा हर नेकी कथा सुनाए दुरमत मैल गई सब निकल सत संगत मिल बुद्ध पाए राम जन गुरमत राम बोलाए जो जो सुने कहे सो मुकता राम जपत सो हाय रहाव जे वडभाग होवै मुख मस्तक हर नाम जना पेटा हर राम जना पेटाए जे वडभाग होवै मुख मस्तक।

मन चाखिया त्रिपत रहे आगाई काहो नानक मेरी आसा पूरी सतगुर की सरनाई राम कली महला पंजवा अंगीकार किया प्रब अपने बैरी सगले साधे जिन बैरी है एहो जग लूटिया ते बैरी लै बाधे सतगुर परमेसर मेरा अनक राज भोग रस माणी नाओ जपी परभाषा तेरा रहाओ चीत न आवस दूजी बाता सिर ऊपर रखवारा बेप्रवाह रहत है।

परम पद पाया छोड़ ना कत हो जाता वर्ण ना साकौ जैसा तू है साचे अलख अपारा अतुल अथाह अडोल स्वामी नानक खसम हमारा राम कली महला पंजवा तू दाना तू अबचर तू ही तू जात मेरी पाती तू अडोल कदे डोल है नाही ता हम कैसे ताती तू अडोल कदे डोल है नाही ता हम कैसी ताती एक है एक है एक तू ही एक है तू राया तौ कृपा ते सुख पाया रहाओ तू सागर हम हंस तुम्हारे तुम मेहमान कलाला तुम देव हो तिल संक न मान हो हम पुंच है सदा निहाला हम बारिक तुम पिता हमारे तुम मुख देव हो खीरा हम खेल है सब लाड लडाव है तुम सद गुणी गहीरा तुम पूर्ण पूर्ण तुम पूर्ण पूर रहे संपूर्ण हम पी संग अगाए मिलत मिलत मिलत मिल रहया।

मंडली तरन सबाई ऊपर गगन चंदोवा पावन बिचोला करत अकेला जल ते ओ पत होवा पंच तत् कर पुत्रा कीना किरत मिलावा होवा चंद सूरज द्वे जरे चरागा चह कुंट पीतर राखे दस पातो पंच संगीता एक पीतर।

कहो नानक गुर भरम चुकाया, ना कोई मरै ना आवै जाया। राम कली महला पंजवा, जप गोबिंद गोपाल लाल, राम नाम सिमर तू जीव है।

तान मन शीतल अगन निवारी अनद रूप प्रगटे संसारी क्या देवो जा सब किछ तेरा साध बलिहार जाओ लख बेरा तन मन जियो पिंड दे साजिया गुर कृपा ते नीच निवाजिया खोल के वारा महल बुलाया जैसा सा तैसा दिखलाया

जा कौ गुर हर दिए सूखा, ता कौ बहुर ना लाग है दूखा, आपे आप सर्व प्रतिपाल, नानक रातौ रंग गोपाल, राम कली महला पंजवा।

जप तप ध्यान अनेक प्रकार किया तिन दान भगत सोई कल मह परवान जा कहो ठाकुर दिया मान साध संग मिल भय प्रगास सहज सुख आस निवास पूरे सतगुर दिया विसास नानक होए दासन दास राम कली महला पंजवा।

शूर परम पुले बाद अहंकारी संग नाही रे सगल पसारी सोक हरख मह देह बिरधानी साकत इव ही करत बिहानी हर का नाम अमृत कल माहे एहो निदाना साधु पाहे एहो निदाना साधु पाहे नानक गुर गोविद जिस तूठा काट काट रमैया तिन ही डीठा राम कली महला पंजवा पांच सबद तह पूरन नाद अनहद बाजे अचरज बिसमाद केल करह संत हर लोग पार ब्रह्म पूरन निरजोग सुख सहज आनंद भवन साध संग बैस गुण गाव है तह रोग सोग नहीं जन्म मरन रहाओ ऊहा सिमरह केवल नाम बिरले पाव है ओह विश्राम भोजन भाव कीर्तन आधार नहचल आसन बेसुमार डिगै न डोलै कतहु ना धावै गुर प्रसाद।

0: गंगा दुर्गंध तृतीय व्यवस्था सिंचे माए बिरद पया छोड़ चलियो पछुताए चिरंकाल पाई दुर्लभ देह चिरंकाल पाई दुर्लभ देह नाम बिहूणी होई खेह पशु परेत मुगद ते बुरी तिसह ना बूझै जिन एह सिरी सुन करतार गोविंद गोपाल दीन दयाल सदा कृपाल तुमह छडावहो छुटकह बंद तुमह छडावहो छुटकह बंद बखस मिलावहो नानक जग अंध।
1: इत्थे जिहड़ा पिछे पाठ आया सी चिरंकाल पाई दुर्लभ देह जे दुर्लभ पढ़ांगे तां फिर बब्बा लग जाणा भब्बे दी थां ते जिस तरह ए बारे पहला दसिया ही होया भी भब्बे की आवाज इत थोड़ी भारी करके बोली जाएगी पर बब्बा पूरा नहीं बनता इस करके फिर दुर्लभ इदा पाठ करना दुर्लभ नहीं करना फिर बब्बा लग जाना। हाँ जी
0: रामकली महला पंजवा कर संजोग बनाई काच तिस संग रहो याना राच प्रत पार नित नित सार समार अंत की बार ऊठ सिधार नाम बिना सब झूठ परानी
1: झूठ
0: नाम बिना सब झूठ परानी गोविंद भजन बिन अवर संग राते ते सब माया मूठ परानी रहाओ तीरथ नाए ना उतरस मैल करम धर्म सब होमै फैल लोक पचारै गत नहीं होए नाम बिहूणे चल सह रोए बिन हर नाम ना टूटस पटल सोधे शास्त्र सिमरत सगल सो नाम जपै जिस आप जपाए सगल फला से सुख समाए राखन हारे राखो आप सगल सुखा प्रभ तुमरै हाथ जित लाभ है तित लाग है स्वामी नानक साहिब अंतर जामी रामकली महला पंजवा जो किछ करै सोई सुख जाना मन असमझ साध संग पतियाना डोलन ते चूका ठहराया सत माहे ले सत समाया दुख गया सब रोग गया प्रभ की आज्ञा मन मेहमानी महापुरख का संग भया रहाओ सगल पवित्र सर्ब निर्मला जो वरताए सोई भला जह राखै सोई मुक्त थान जो जपाए सोई नाम अठ सठ तीरथ जह साध भगत अठ सठ तीरथ जह साध भगत रहै तह वैकुंठ जह नाम उचरहै सर्ब आनंद जब दर्शन पाईऐ राम गुणा नित नित हर गाईऐ आपे घट घट रहिया व्याप दयाल पुरख प्रगट परताप कपट खुलाने भ्रम नाठे दूर नानक को कपट खुलाने भ्रम कपट खुलाने
2: खुलाने लल्ले नु पारक
0: कपट खुलाने प्रम नाठे दूरे नानक कौ गुर पेटे पूरे रामकली महला पंजवा कोट जाप ताप विश्राम रिद बुद्ध सिद्ध सुर ज्ञान अनक रूप रंग भोग रसै गुरमुख नाम निमख हृदय वसै हर के नाम की वडियाई कीमत कहन न जाई रहाओ सूर वीर धीरज मत पूरा सहज समाध धुन गहर गंभीर।

खोजहो संतहो हार ब्रह्म ज्ञानी बिस्मन बिस्म पय बिस्मादा परमगत पाव है हार सिमर प्राणी रहाओ

ब्रह्म नहीं जाना है भेद अवतार ना जाना है अंत परमेश्वर पार ब्रह्म बेअंत अपने गत आप जाना सुन सुन अवर बखाना रहाओ संकरा नहीं जाना है भेव खोजत खोजत हारे देव देविया नहीं जाना मर्म सब ऊपर अलख पार ब्रह्म अपने रंग करता केल आप बिशोरै आपे मेल एक भरमे एक भगती लाए अपना किया आप जनाए संतन की सुन साची साखी सो बोल है जो पेख है आखी नहीं लेप तेस पुन ना पाप नानक का

तू अगणत जीव का दाता जिस है जनाब है तिन तू जाता जो उपायो तिस तेरी आस सगल अराध है प्रभ गुणतास नानक दास तेरा कुर्बान बेअंत साहेब मेरा मेहरबान राम कली महला पंजवा राखन हार दयाल कोट पाव खंडे निमख ख्याल सगल अराध है जंत मिलिय प्रभ गुर मिल मंत जियन को दाता मेरा प्रभ पूर्ण परमेश्वर स्वामी

मन माहे भय आनंद तारन तरन हर सरन जीवन रूप हर चरण संतन के प्राण आधार ऊचे ते ऊच अपार सो मत सार जित हर सिमरिजै सो मत सार जित हर सिमरिजै कर कृपा जिस आपे दीजै सुख सहज आनंद हर नाव नानक जपिया गुर मिल नाव राम कली महला पंजवा सगल सियानप छाड कर सेवा सेवक साज अपना आप सगल मिटाए मन चिंदे सही फल पाए हो सावधान अपने गुर स्यो आसा मनसा पूर्ण होवे पावह सगल निदान हर स्यो पावह सगल निदान आसा मनसा पूर्ण होवे पावह सगल निदान गुर स्यो रहाओ दूजा नहीं जाने कोए सतगुर निरंजन सोए मानुख का कर रूप न जान मिली न माने मान गुर की हर टेक टिकाए अवर आसा सब लाहे हर का नाम माग निदान ता दरगह पावह मान गुर का बचन जप मंत एहा भगत सार तत् सतगुर भय दयाल नानक दास निहाल राम कली महला।

0: आनंद कर संत हर जप शाद स्यानप बाहो चतुराई गुर का जप मंत निर्मल रहाव।
1: पिछे जिहड़ा पाठ सी ना आपना इदां कट्ठा ही बोल लेना, जे थोड़ा इनू स्लो बोलांगे ना आपना फिर इहदे अर्थ थोड़े जे वखरे हो जाणे। इनू आपना इसे तरीके बोल लेना, जे नाणा होवे फिर आपना, नन्ना होवे तां आपना, आप ना फिर थोड़ा जे स्लो बोलांगे तो वखरे हो जांदे दोनों शब्द आप ना। हां जी।
0: रहाओ एक की कर आस भीतर निर्मल जप नाम हर हर गुर के चरण नमस्कार भवजल उतर है पार देवन हार दातार अंत न पारावार जा कै कर सर्ब निधान राखन हार निदान नानक पाया ए हो निदान हरे हर निर्मल नाम जो जपै तिसकी गत होए जो जपै तिसकी गत होए नानक करम प्राप्त होए राम कली महला पंजवा दुलब देह सुवार जाहे ना दर्ग है हार हलत पलत तुद होए वड्याई अंत की बेला ले छड़ाई राम के गुण गाओ हलत पलत हो हे दोवै सुहेले अचरज पुरख त्याओ रहाओ उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होवह मीत निर्मल तेरा होवै चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरै भार।
1: इत्थे एक बेनती करनी सी, पिछे एक शब्द आया सी नानक पाया एहो निदान, पाठ तां इहदा ठीक ही होया सी। सो इत्थे एक ध्यान देना है, ये पाठ कई बारी दद्दे नाल निदान भी आउंदा है। हाँ जी, इत्थे तुसी वेखोगे दोने पंक्तियां कठियां ने जा के घर सर्व निदान राखन हार निदान। पहला जिहड़ा निदान वह दद्दे दे नाल है, इसे नाल दी पंक्ति विच जिहड़ा दूजा वह निदान दद्दे दे नाल है। सो इस तरीके जिथे जिवें लिखिया आवे निदान का मतलब खजाना हुंदा है। निदान दे कई अर्थ ने निदान का अर्थ बच्चा भी कर लैंदे आ कई बारी निदान, जां निदान का अर्थ जिहड़ा थोड़ा जिहा सियाणा घट होवे बच्चा भी सियाणा घट ही मनिया जांदा है शरारतां करन करके। सो इत्थे निदान ते निधान इहदा फर्क जरूर कृपा करके समझना है। निदान का अर्थ खजाना भंडार संपत्ति ए अर्थ किए जाते हैं, निदान का अर्थ जिहड़ा दाना पुरश ना होवे जा बच्चा, निदान का अर्थ अंत समय भी बाई जी ने दसिया है। सो इस तरीके दे नाल तीन तीन चार चार अर्थ एक शब्द के होंगे आ, जिथे फिर जिहो जिहा प्रकरण चलता है उत्थे फिर ओहदे ओह जे अर्थ किए जाते हैं। हुण इत्थे जिवें आया राखण हार निदान, इहदा मतलब अंत दे समय रखण वाला अकाल पुरख वाहे उस राखण हार की गल हो रही है। सो यह निदान ते निदान का फर्क जरूर आप जी ने ख्याल विच रखदे होया पाठ दद्दा ते तद्दा शुद्ध उच्चारण करना है। हाँ जी।
0: उठत बैठत हर जाप बिनसै सगल संताप बैरी सब होवह मीत निर्मल तेरा होवह चीत सब ते उत्तम एहो कर्म सगल धर्म मह श्रेष्ठ धर्म हर सिमरन तेरा होए उधार जन्म जन्म का उतरै भार पूर्ण तेरी होवै आस जम की कटियै तेरी फास गुर का उपदेश सुनिजै नानक सुख सहज समीजै।
1: कृपा करके बेनती है, बच्चे काफी डिस्टर्बेंस कर रहे बार बार, इन्हां नूं संभालो अपने कोल बिठाओ ताकि इन्हां नूं भी महाराज जी की हजूरी विच बहण दी सोझी प्राप्त होवे। जे कोई बच्चे रोंदे जां आवाज आउंदी कृपा करके बाहर ले जाओ।
2: राम कली महला पंजवा जिसकी तिसकी कर मान आपन लाहे गुमान जिसका तू तिसका सब कोए तिसह अरा तिसह अराध।

जिस चित आए बिन सह दुखा, हलत पलत तेरा उजल मुखा। कौन कौन उदरे गुन गाए, गणन गणन ना जाई, गणन ना जाई कीम ना पाए। बूढ़त लोह साध संग तरै, नानक जिस है परापत।

0: खुद खुदाए वड बेसुमार ओ निमो भगवंत गुसाई
1: ओ निमो बिंदी लाग
0: ओ निमो भगवंत
1: सिहारी लगी हुई है सो इथे सिहारी नहीं लाउणी ओ नमो पाठ ही ठीक है इनू कृपा करके आप जी अपने नोट्स विच जरूर नोट कर लियो ओ नमो पाठ करना निमो नहीं करना इथे सिहारी लगी
0: ओ नमो भगवंत गुसाई खालक रब रहिया सर्ब ठाई रहाओ जगन्नाथ जग जीवन मा

0: किछ लखी ना जाए, लीला किछ लखी ना जाए, लीला किछ लखी ना जाए, मेहर दया कर करना हार,
1: मेहर मम्मी नु सिहारी लाके मेहर दया कर करना,
0: मेहर दया कर करना हार, भगत बंद की देह सिरजन हार, कहो नानक।

कथ कथा साची प्रभ पूरन ज्योति ज्योत समाणी रहाओ तृष्णा भूख सब नासी संत प्रसाद जपया अभिना

साध की सच टहल कमानी ताब होए मन सुध परानी जन का सफल दरस डीठा नाम प्रभु का घट घट बूठा मिटाने सब कल कलेश जिस ते उपजे तिस मह परवेश प्रगटे आनूप गोविंद प्रभ पूरे नानक बख सिंह।

सिंध समायो घट के माहे करण हार कौ किछ अचरज नाहे जौ छूटौ तौ जाय पयाल जौ काढ्यो तौ नदर निहाल पाप पुन हमरै बस नाहे रसक रसक।

सो दर्शन पाए जिस होए दयाल, पार ब्रह्म जिस कृपा करै, साध संग सो भव जल तरै, अमृत पीवहो साध प्यारे, मुख उजल साचै दरबारे, आनंद करहो।

सुनिया तीरथ पास ना बैठा दाता दान करे तह नाही महल उसार ना बैठा जे को सत करे सो छीजै ताप घर ताप ना होई जे को नाव लए बदनावी काल के लखन एई जिस सिकदारी तिसह खुआरी चाकर के हे डरना जा सिकदारै पवै जंजीरी ता चाकर हथ हो मरना आख गुणा कल आईय तेहो जोगा।

गुर की शरण पवै सुख थीए, कर अपराध शरण हम आया, गुर हर भेटे पुरब कमाया, गुर शरण न आइय ब्रह्म न पाइय, परम भुलाइय जन्म मर आइय, जम दर बाधो मरै विकार, ना हृदय नाम न शब्द अचार, एक पादे पंडित मिसर कहाव है, दुबिदा राते महल न पाव है, जिस

0: किन्ही सिद्ध बहु चाटक चेटक लाए, किन्ही सिद्ध बहु चेटक लाए, किन्ही पेख बहु थाट बनाए, किन्ही तांत मांत बहु वेखा
1: बनाए बनाए पुले,
0: किन्ही बेख बहु किन्ही पेख बहु थाट बनाए, किन्ही तांत मांत बहु वेखेवा, मोहे दीन हर हर हर सेवा, कोई चतुर कहावै पंडित, को खाट कर्म सहत स्यो मंडित, कोई करै आचार सो करनी, मोहे दीन हर हर हर सरणी, सगले कर्म धर्म जुग सोदे, बिन नावै इहो मन ना प्रबोधे, कहो नानक जौ साध संग पाया, बूजी त्रिसना महा सीत लाया, राम कली महला पंजवा, इस पानी ते जिन तू करया, इस पानी ते जिन तू करया, माटी का ले देहुरा करया, उकत जोत लै सुरत परीख्या।

तिस ठाकुर की रहो मन सरना छत्तीह अमृत जिन भोजन दिए अंतर थान ठहरावन कौत किए बसुदा दियो बर्तन बलना तिस ठाकुर के चित रख चरना पेखन कौ नेतर सुनन कौ करना हस्त कमावन बासन रसना चरण चलन कौ सिर कीनो मेरा मान तिस ठाकुर के पूजहो पैरा अपवित्र पवित्र जिन तू करया सगल जौन मह तू सिर धरया अब तू सीज भावै नहीं सीजै कारज सवरै मन प्रभ त्याई जै ईहा ऊहा एकै ओही जात कत देखियै तत तत तोही तिस सेवत मन आलस करै जिन विसरै जिस विसरै एक निमख ना सरै।

0: राज मिलख वापारा संत बिहावै हर नाम अधारा रचना साच बनी सबका साबका एक तनी रहाओ काहू बिहावै वेद अरबाद काहू
1: बिनती है बिहावै जो बिहावै पढ़ते हैं तो फिर वाह वाह साउंड करता है काहू बिहावै बबा पूरा बोल के जिदा बर्मा बोलते ना असि इसे तरीके बिहावै बोलो
0: काहू बिहावै वेद अरबाद काहू बिहावै रसना साध काहू बिहावै लपट संग नारी।

0: हर दरब चौराए हर जन बिहावै नाम त्याए काहू बिहावै जोग तप पूजा काहू रोग सोग परमीजा काहू पवन तार जात बिहाए संत बिहावै कीर्तन गाए।
1: पाठ जिवें होया पवन तार ए इकट्ठा ही है, कई बार ये वखरा वखरा भी लिखिया तुहानू मिलेगा पवन तार, पर ए बोलना इकट्ठा ही है पवन तार।

त्यों हर जन राखै कंठ लाए, ज्यो अंधले पेखत होए आनंद, गुंगा बखत गावै बहु छंद, पिंगुल पर्वत परते पार, हर कै नाम सगल उधार, ज्यो पावक संग सीत को नास, ऐसे प्राचत संत संग बिनास, ज्यो साबुन कापर उजल होत, नाम जपत सब भ्रम भौ खोत, ज्यो चकवी सूरज की आस, ज्यो चात्रिक बूंद की प्यास, ज्यो कुरंक नाद करन समाने, त्यो हर नाम हर जन मन है सुखाने।

अपने भाणे अंदर सुख दी बतीत करवाउणी, अमृत वेले दे जागणे, नाम दान इशनान दृढ़ करवाउणा। ग्रीवनवाज आप जी।

ही सुख मंडा हे रागोड़ी पूर्वी महला पंजवा। करो बिनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला। ईहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सुहेला। औद कटै दिन सरैणा रे मन गुरमिल काज सवारे रहाओ। एह संसार विकार संसे मैं तरयो ब्रह्म ज्ञानी। जिसे जगाए पियावे एहो रस अकथ कथा तिन जानी। जाको आए सोई बिहाजो हर गुरते मन है बसेरा। निज घर महल पावहो सुख सहजे बोहर न होए गो फेरा। अंतर जामी पुरख बिधाते शरदा।

दास यह सुख मांगे मोको कर संतन की तूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तुद आगे अरदास हमारी पिंड सब।

जाए है मेरा सतगुरु सो थान सुहावा राम राजे विसर नाहीं दातार विसर नाहीं दातार।

बेचरतन जवाहर मानिक जे एक गुर की सिख सुनी गुरा एक देह बुझाई सबना जिया का एक दाता सो मैं विसर ना जाई जे जुग चारे आर जा होर दसुनी होए नवा खंडा विच जानी ऐ नाल चलै सब कोए चंगा नाउ रखाए कै जस कीरत जग ले जे तिस नदर न आवई ता वात न पुछै के कीटा अंदर कीट कर दोषी दोस धरे नानक निर्गुण गुण करे गुणवंतिया गुण दे ते हा कोय न सुजई जे तिस गुण कोय करे सुनिया सिद्ध पीर सुरनाथ सुनिया धरत धवल आकाश सुनिया दीप लोह पाताल सुनिया पोहे न सकै काल नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया ईसर ब्रह्मा इंद सुनिया मुख साला हनुमंद सुनिया जोग जुगत तन भेद सुनिया सासत सिमृत वेद नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सत संतोख ज्ञान सुनिया अठ सठ का इसनान सुनिया पढ़ पढ़ पावह मान सुनिया लागै सहज ध्यान नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास सुनिया सरा गुणा के गाह सुनिया सेख पीर पात साह सुनिया अंधे पावह राह सुनिया हाथ होवै असगाह नानक भगता सदा विगास सुनिया दुख पाप का नास मने की गत कही ना जाए जे को कहै पिछै पछुताए कागद कलम ना लिखन हार मने का बह करन विचार ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जाने मन कोए मन्नै सुरत होवै मन बुद्ध मन्नै सगल भवन की सुध मन्नै मुहे चोटा ना खाए मन्नै जाम कै साथ ना जाए ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै मार्ग ठाक ना पाए मन्नै पत स्यो प्रगट जाए मन्नै मग ना चलै पंथ मन्नै धर्म सेती संबंध ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए मन्नै पावह मोख द्वार मन्नै परवारै साधार मन्नै तरै तारे गुर सिख मन्नै नानक पवहै ना भिख ऐसा नाम निरंजन होए जे को मन जानै मन कोए पंच परवान पंच प्रधान पंचे पावह दरगह मान पंचे सोहे दर राजान पंचा का गुर एक ध्यान जे को कहै करै विचार करते कै करनै नाही सुमार धौल धर्म दया का पूत संतोख थाप रखिया जिन सूत जे को बुझै होवै सचियार धवलै उपर किता भार धरती होर परै होर होर तिस्ते भार तलै कमन जोर जी जात रंगा के नाव सबना लिखिया बुड़ी कलाम एहो लेखा लिख जाने कोए लेखा लिखिया केता होए केता तान सुआले हो रूप केती दात जाने कौन कूत कीता पसाओ एको कवाओ तिस्ते होए लख दरियाओ कुदरत कमन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख जाप असंख पाओ असंख पूजा असंख तप ताओ असंख ग्रंथ मुख वेद पाठ असंख जोग मन रह उदास असंख भगत गुण ज्ञान विचार असंख सती असंख दातार असंख सूर मोह भख सार असंख मोन लिव लाए तार कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख मूरख अंध घोर असंख चोर हराम खोर

असंख अमर कर जाहे जोर असंख गाल वड हत्या कमाहे असंख पापी पाप कर जाहे असंख कूड़ियार कूड़े फिराहे असंख मलेच्छ मल भख खाहे असंख निंदक सिर करहै भार नानक नीच कहै विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार असंख नाव असंख थाव अगम अगम असंख लोह असंख कह है सिर भार होए अखरी नाम अखरी सालाह अखरी ज्ञान गीत गुण गाह अखरी लिखन बोलन बाण अखरा सिर संजोग वखान जिन एह लिखे तिस सिर नाहे जिव फुरमाए तिव तिव पाहे जेता कीता तेता नाओ विन नावै नाहीं को थाओ कुदरत कवन कहा विचार वारिया ना जावा एक वार जो तुद भावै साई भली कार तू सदा सलामत निरंकार भरिया हाथ पैर तन देह पानी धोतै उत्तर सो खेह मूत पलीते कपड़ होए दे साबून लइयै ओह धोए भरिया मत पापा कै संग ओह धोपै नावै कै रंग पुन्नी पापी आखन नाहे कर कर करना लिख लै जाहो आपे बीज आपे ही खाहो नानक हुक्मी आवह जाहो तीरथ तप दया दत दान जे को पावै तिल का मान सुनिया मन्या मन कीता भाओ अंतरगत तीरथ मल नहाओ सब गुण तेरे मैं नाही कोए बिन गुण कीते भगत ना होए स्वस्थ आत बाणी बरमाओ सत सुहान सदा मन चाओ कवन सो वेला वक्त कवन कवन थित कवन वार कवन से रुति माहो कवन जित हुआ आकार वेल ना पाया पंडती जे हो वै लेख पुराण वक्त ना पायो का दिया जे लिखन लेख कुरान थित वार ना जोगी जान रुत माहो ना कोई जा करता सिर ठिकाओ साजे आपे जाने सोई केव कर आखा केव सालाही क्यो वरनी केव जाना नानक आखन सब को आखै एक दू एक सियाना वड्डा साहिब वड्डी नाई कीता जा का हुवै नानक जे को आपाओ जानै अगै गया ना सोहै पाताला पाताल लख आगासा आगास ओड़क ओड़क भाल थके वेद कहन एक वात सहस अठारह कहन कतेबा असलू एक धात लेखा होए ता लिखिया लेखा होए विनाश नानक वड्डा आखिया आपे जाने आप सालाही सालाही एति सुरत ना पाईया नदिया अतै वाह पव है समुंद ना जानिया है समुंद साह सुल्तान गिरहा सेती माल धन कीड़ी तुल ना होवनी जे तिस मनहु ना विसर है अंत ना सिफती कहन ना अंत अंत ना करन देन ना अंत अंत ना वेखन सुनन ना अंत अंत ना जापै क्या मन मंत अंत ना जापै कीता आकार अंत ना जापै पारावार अंत कारण केते बिल लाहे ताके अंत ना पाए जाहे एहो अंत ना जाने कोए बहुता कहिया बहुता होए वड्डा साहिब ऊचा थाओ ऊचे उपर ऊचा नाओ एवड ऊचा हुवै कोए तिस ऊचे कौ जाने सोए जेवड आप जाने आप आप नानक नदरी करमी दात बहुता कर्म लिखिया ना जाए वड्डा दाता तिल ना तमाए केते मंगह जोध अपार केते आ गणत नहीं विचार केते खप तुटह वेकार केते लै लै मुकर पाहे केते मूर्ख खाही खाहे केते आ दुख भूख साद मार एह पे दात तेरी दातार बंद खलासी भाणै होए होर आख ना सकै कोए जे को खाएक आखन पाए ओह जानै जेतिया मोहे खाए आपे जानै आपे दे आख है से पे के
जिसनो बक्से सिफत सा लाह नानक पात साहि पात साहु अमुल गुण अमुल वापार अमुल वापार ये अमुल पंडार अमुल आवह अमुल लै जाहे अमुल पाए अमुला समाहे अमुल धर्म अमुल दीबान अमुल तुल अमुल परवान अमुल बख्शीस अमुल निशान अमुल कर्म अमुल फुरमान अमुलो अमुल आख्या ना जाए आख आख रहे लिव लाए आख है वेद पाठ पुराण आख है पढ़े करह वख्यान आख है ब्रह्मे आख है इंद आख है गोपी तय गोविंद आख है ईसर आख है सिद्ध आख है केते कीते बुद्ध आख है दानव आख है देव आख है सुर नर मुन जान सेव केते आख है आखन पाहे केते कह कह उठ उठ जाहे एते कीते होर करे हे ता आख ना सकह केई के जे वड भावै ते वड होए नानक जानै साचा सोए जे को आखै बूल वे गाड़ ता लिखिया सिर गावारा गावार सो दार के हा सो घर के हा जित बह सर्ब समाले वाजे नाद अनेक असंखा केते वावन हारे केते राग परि स्यौ कहियन केते गावन हारे गावह तुहनो पौन पानी बैसंतर गावै राजा धर्म दुआरे गावह चित गुप्त लिख जान है लिख लिख धर्म विचारे गावह ईसर ब्रह्मा देवी सोहन सदा सवारे गावह इंद इदासन बैठे देव त्या दार नाले गावह सिद्ध समाधि अंदर गावन साध विचारे गावन जति सति संतोखी गावह वीर करारे गावन पंडित पढ़ नर खीसर जुग जुग वेदा नाले गावह मोहनिया मन मोहन सुरगा मछ पयाले गावन रतन उपाय तेरे अठ सठ तीरथ नाले गावह जोध महाबाल सूरा गावह खानी चारे गावह खंड मंडल वर भंडा कार कर रखे धारे सही तुद नो गावह जो तुद पावन रते तेरे भगत रसाले होर केते गावन से मैं चेतना आवन नानक क्या विचारे सोई सोई सदा सच साहिब साचा साची नाई है पी होसी जाय ना जासी रचना जिन रचाई रंगी रंगी भाती कर कर जिनसी माया जिन उपाई कर कर वेखै कीता अपना जिव तिस दी वडियाई जो तिस भावै सोई करसी हुकम ना करना जाई सो पात साहो साहा पात साहिब नानक रहन रजाई मुंदा संतोख सरम पात झोली ध्यान की कर है बिभूत खिंथा काल कुवारी काया जुगत डंडा प्रतीत आई पंथी सगल जमाती मन जीता जग जीत आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेस भुगत ज्ञान दया भंडारण घट घट वाजह नाद आप नाथ नाथी सब जा की रिद्ध सिद्ध अवरा साध संजोग वे जोग दुयकार चला वह लेखे आवह भाग आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेस एका माई जुगत व्याई तिन चेले परवान एक संसारी एक भंडारी एक लाए दी बाण जिव तिस भावै तिवै चलावै जिव होवै फुरमान ओह वेखै उन्ना नदर ना आवै बहुता एहो विडान आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेस आसन लोए लोए भंडार जो किछ पाया सो एका वार कर कर वेखै सिरजनहार नानक सच्चे की साची कार आदेश तिसै आदेश आदि अनिल अनादि अनाहत जुग जुग एको वेस एक दू जीबाओ लख होहे लख होवह लख वीस लख लख गेड़ा आखिया है एक नाम जगदीश
ਏ ਤੋ ਰਾਹੇ ਪਤ ਪਵੜੀਆ ਚੜੀਆ ਹੋਏ ਇੱਕੀਸ ਸੁਣ ਗੱਲਾ ਆਕਾਸ ਕੀ ਕੀਟਾ ਆਈ ਰੀਸ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਪਾਈ ਐ ਕੂੜੀ ਕੂੜੈ ਠੀਸ ਆਖਣ ਜੋਰ ਚੁੱਪੈ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਮੰਗਣ ਦੇਣ ਨਾ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੀਵਨ ਮਰਨ ਨਹਿ ਜੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਮਨ ਸੋਰ ਜੋਰ ਨਾ ਸੁਰਤੀ ਗਿਆਨ ਵਿਚਾਰ ਜੋਰ ਨਾ ਜੁਗਤੀ ਛੁੱਟੈ ਸੰਸਾਰ ਜਿਸ ਹੱਥ ਜੋਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਸੋਏ ਨਾਨਕ ਉੱਤਮ ਨੀਚ ਨਾ ਕੋਏ ਰਾਤੀ ਰੁੱਤੀ ਥਿੱਤੀ ਵਾਰ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਅਗਨੀ ਪਾਤਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਥਾਪ ਰੱਖੀ ਧਰਮਸਾਲ ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਜੀ ਜੁਗਤ ਕੇ ਰੰਗ ਤਿੰਨ ਕੇ ਨਾਮ ਅਨੇਕ ਅਨੰਤ ਕਰਮੀ ਕਰਮੀ ਹੋਏ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਆਪ ਸੱਚਾ ਦਰਬਾਰ ਤਿੱਥੈ ਸੋਹਣ ਪੰਚ ਪਰਵਾਨ ਨਦਰੀ ਕਰਮ ਪਵੈ ਨੀਸਾਨ ਕੱਚ ਪਕਾਈ ਉਥੈ ਪਾਏ ਨਾਨਕ ਗਇਆ ਜਾਪੈ ਜਾਏ ਧਰਮ ਖੰਡ ਕਾ ਇਹੋ ਧਰਮ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਕਾ ਖੋ ਕਰਮ ਕੇਤੇ ਪਵਨ ਪਾਣੀ ਵੈ ਸੰਤਰ ਕੇਤੇ ਕਾਣ ਮਹੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਬਰਮੇ ਘਾੜਤ ਘੜੀਆ ਹੈ ਰੂਪ ਰੰਗ ਕੇ ਵੇਸ ਕੇਤੀਆ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਮੇਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਧੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੇਤੇ ਇੰਦ ਚੰਦ ਸੂਰ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਮੰਡਲ ਦੇਸ ਕੇਤੇ ਸਿੱਧ ਬੁੱਧ ਨਾਥ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਦੇਵੀ ਵੇਸ ਕੇਤੇ ਦੇਵ ਦਾਨਵ ਮੁਨ ਕੇਤੇ ਕੇਤੇ ਰਤਨ ਸਮੁੰਦ ਕੇਤੀਆ ਖਾਣੀ ਕੇਤੀਆ ਬਾਣੀ ਕੇਤੇ ਪਾਤ ਨਰਿੰਦ ਕੇਤੀਆ ਸੁਰਤੀ ਸੇਵਕ ਕੇਤੇ ਨਾਨਕ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਗਿਆਨ ਖੰਡ ਮਹਿ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਚੰਡ ਤਿੱਥੈ ਨਾਦ ਵਿਨੋਦ ਕੋਡ ਆਨੰਦ ਸਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਰੂਪ ਤਿੱਥੈ ਘਾੜਤ ਘੜੀਐ ਬਹੁਤ ਅਨੂਪ ਤਾ ਕੀਆ ਗੱਲਾ ਕਥੀਆ ਨਾ ਜਾਹੇ ਜੇ ਕੋ ਕਹੈ ਪਿੱਛੈ ਪਛੁਤਾਏ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਤ ਮਤ ਮਨ ਬੁੱਧ ਤਿੱਥੈ ਘੜੀਐ ਸੁਰਾ ਸਿੱਧਾ ਕੀ ਸੁਧ ਕਰਮ ਖੰਡ ਕੀ ਬਾਣੀ ਜੋਰ ਤਿੱਥੈ ਹੋਰ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਿੱਥੈ ਜੋਧ ਮਹਾਬਲ ਸੂਰ ਤਿੰਨ ਮਹਿ ਰਾਮ ਰਹਿਆ ਭਰਪੂਰ ਤਿੱਥੈ ਸੀਤੋ ਸੀਤਾ ਮਹਿਮਾ ਮਾਹੇ ਤਾ ਕੇ ਰੂਪ ਨਾ ਕਥਨੇ ਜਾਹੇ ਨਾ ਓਹੇ ਮਰ ਹੈ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਹੇ ਜਿਨ ਕੈ ਰਾਮ ਵਸੈ ਮਨ ਮਾਹੇ ਤਿੱਥੈ ਭਗਤ ਵਸਹਿ ਕੇ ਲੋ ਕਰਹਿ ਆਨੰਦ ਸੱਚਾ ਮਨ ਸੋਏ ਸੱਚ ਖੰਡ ਵਸੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਰ ਕਰ ਵੇਖੈ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਤਿੱਥੈ ਖੰਡ ਮੰਡਲ ਵਰ ਭੰਡ ਜੇ ਕੋ ਕਥੈ ਤਾ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤ ਤਿੱਥੈ ਲੋ ਲੋ ਆਕਾਰ ਜਿਵ ਜਿਵ ਹੁਕਮ ਤਿਵੈ ਤਿਵਕਾਰ ਵੇਖੈ ਵਿਗਸੈ ਕਰ ਵਿਚਾਰ ਨਾਨਕ ਕਥਨਾ ਕਰੜਾ ਸਾਰ ਜਤ ਪਾਹਾਰਾ ਧੀਰਜ ਸੁਨਿਆਰ ਅਹਿਰਨ ਮਤ ਵੇਦ ਹਥਿਆਰ ਭਾਉ ਖੱਲਾ ਅਗਨ ਤਪ ਤਾਉ ਭਾਂਡਾ ਭਾਉ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਤਿਤ ਢਾਲ ਘੜੀਐ ਸ਼ਬਦ ਸੱਚੀ ਟਕਸਾਲ ਜਿਨ ਕਉ ਨਦਰ ਕਰਮ ਤਿਨ ਕਾਰ ਨਾਨਕ ਨਦਰੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲ ਸਲੋਕ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਦੁਇ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖਿਲੈ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗੇ ਆਈਆ ਬੁਰੇ ਆਈਆ ਵਾਚੈ ਧਰਮ ਹਦੂਰ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੈ ਕੇ ਦੂਰ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਘਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੇਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜਾਪ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਵਾਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਸਵੇ ਛਪੈ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਚੱਕਰ ਚਿਹਨ ਅਰ ਬਰਨ ਜਾਤ ਅਰ ਪਾਤ ਨਹਿਨ ਜਿਹ ਰੂਪ ਰੰਗ ਅਰ ਰੇਖ ਭੇਖ ਕਉ ਕਹਿ ਨਾ ਸਕਤ ਕੇਹ ਅਚਲ ਮੂਰਤ ਅਨਭਉ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਮਿਤੋਜ ਕਹਿ ਜੈ ਕੋਟ ਇੰਦਰ ਇੰਦਰਾਨ ਸਾਹੇ ਸਾਹਾਨ ਗਨਿਜੈ ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਮਹੀਪ ਸੁਰ ਨਰ ਅਸੁਰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਬਨ ਤ੍ਰਿਨ ਕਹਿਤ ਤਵੈ ਸਰਬਨਾਮ ਕਥੈ ਕਵਨ
ਕਰਮ ਨਾਮ ਬਰਨਤ ਸੁਮਤ ਪੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮਸਤਵੰ ਅਕਾਲੇ ਨਮਸਤਵੰ ਕਿਰਪਾਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੇਖੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਏ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਠਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਕਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਧਰਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਤਾਮੰ ਨਮਸਤੰ ਅਜੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੀਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਟਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੀਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨਾਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਛੇਦੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਧੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਜੇ ਨਮਸਤੰ ਉਦਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਰੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋ ਏਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਨੇਕੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜੂਪੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਨਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਕਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਘਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੂਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਲੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸੋਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਤਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਅਥਾਪੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਮਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਅਬਾਹੇ ਨਮਸਤੰ ਤ੍ਰਿਵਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਸਰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਪ੍ਰਭੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੋਜੋਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਰੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪੰਗੇ ਨਮਸਤੰ ਅਗੰਮੇ ਨਮਸਤਸਤਰੰਮੇ ਨਮਸਤੰ ਜਲਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਾਸਰੇ ਨਮਸਤੰ ਅਜਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਪਾਤੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਜਬੇ ਨਮਸਤਸਤ ਅਜਬੇ ਅਦੇਸੰ ਅਦੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਸੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਧਾਮੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਭਾਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਰੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੂਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਖਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਥਾਪੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਭੇਵੈ ਨਮਸਤੰ ਅਜਨਮੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਬਨਮੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬਰੰਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭੰਗੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮਸਤਸਤ ਦਿਆਲੇ ਨਮਸਤੰ ਅਭਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਅਮਰਨੇ ਨਮਸਤੰ ਜਰਾਰੰਗ ਨਮਸਤੰ ਕਿਰਤਾਰੰਗ ਨਮੋ ਸਰਬ ਧੰਦੇ ਨਮੋਸਤ ਅਬੰਧੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਸਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਨਿਰਬਾਕੇ ਨਮਸਤੰ ਰਹੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਕਰੀਮੇ ਨਮਸਤੰ ਅਨੰਤੇ ਨਮਸਤੰ ਮਹੰਤੇ ਨਮਸਤਸਤ ਰਾਗੇ ਨਮਸਤੰ ਸੁਹਾਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਸੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪੋਖੰ ਨਮੋ ਸਰਬ ਕਰਤਾ ਨਮੋ ਸਰਬ ਹਰਤਾ ਨਮੋ ਜੋਗ ਜੋਗੇ ਨਮੋ ਭੋਗ ਭੋਗੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਦਿਆਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਚਾਚਰੀ ਛੰਦ ਤਵੈ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਰੂਪ ਹੈ ਅਨੂਪ ਹੈ ਅਜੂ ਹੈ ਅਭੂ ਹੈ ਅਲੇਖ ਹੈ ਅਭੇਖ ਹੈ ਅਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਹੈ ਅਭੇ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਤ੍ਰਿਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਤ੍ਰਿਵਰਗ ਹੈ ਅਸਰਗ ਹੈ ਅਨੀਲ ਹੈ ਅਨਾਦ ਹੈ ਅਜੇ ਹੈ ਅਜਾਦ ਹੈ ਅਜਨਮ ਹੈ ਅਭਰਨ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਭਰਨ ਹੈ ਅਗੰਜ ਹੈ ਅਭੰਜ ਹੈ ਅਝੂਜ ਹੈ ਅਝੰਜ ਹੈ ਅਮੀਕ ਹੈ ਰਫੀਕ ਹੈ ਅਧੰਦ ਹੈ ਅਬੰਧ ਹੈ ਨਿਰਬੂਜ ਹੈ ਅਸੂਜ ਹੈ ਅਕਾਲ ਹੈ ਅਜਾਲ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਹੈ ਅਜਾਹ ਹੈ ਅਨੰਤ ਹੈ ਮਹੰਤ ਹੈ ਅਲੀਕ ਹੈ ਨਿਰਸਰੀਕ ਹੈ ਨਿਰਲੰਬ ਹੈ ਅਸੰਭ ਹੈ ਅਗੰਮ ਹੈ ਅਜੰਮ ਹੈ ਅਭੂਤ ਹੈ ਅਛੂਤ ਹੈ ਅਲੋਕ ਹੈ ਅਸੋਕ ਹੈ ਅਕਰਮ ਹੈ ਅਭਰਮ ਹੈ ਅਜੀਤ ਹੈ ਅਭੀਤ ਹੈ ਅਬਾਹ ਹੈ ਅਗਾਹ ਹੈ ਅਮਾਨ ਹੈ ਨਿਧਾਨ ਹੈ ਅਨੇਕ ਹੈ ਫਿਰ ਏਕ ਹੈ ਪੁਜੰਗ ਪਰਿਆਤ ਛੰਦ ਨਮੋ ਸਰਬ ਮਾਨੇ ਸਮਸਤੀ ਨਿਧਾਨੇ ਨਮੋ ਦੇਵ ਦੇਵੇ ਅਭੇਖੀ ਅਭੇਵੇ ਨਮੋ ਕਾਲ ਕਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਪਾਲੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਗਾਉਣੇ ਨਮੋ ਸਰਬ ਭਾਉਣੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਥੇ ਨਿਰਸੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਮਾਨ ਮਾਨੇ ਨਮੋ ਚੰਦਰ ਚੰਦਰੇ ਨਮੋ ਭਾਨ ਭਾਨੇ ਨਮੋ ਗੀਤ ਗੀਤੇ ਨਮੋ ਤਾਨ ਤਾਨੇ ਨਮੋ ਨਿਰਤ ਨਿਰਤੇ ਨਮੋ ਨਾਦ ਨਾਦੇ ਨਮੋ ਪਾਨ ਪਾਨੇ ਨਮੋ ਬਾਦ ਬਾਦੇ ਅਨੰਗੀ ਅਨਾਮੇ ਸਮਸਤੀ ਸਰੂਪੇ ਪਰਭੰਗੀ ਪਰਮਾਥੇ ਸਮਸਤੀ ਬੇਭੂਤੇ
कलंकं बिना नेकलंके स्वरूपे नमो राज राजेश्वरं परम रूपे नमो जोग जोगेश्वरं परम सिद्धे नमो राज राजेश्वरं परम वृद्धे नमो शस्त्रपाणे नमो अस्त्रमाणे नमो परम ज्ञाता नमो लोकमाता अपेक्षी अपरमी अपोगी अपुगते नमो जोग जोगेश्वरं परम जुगते नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे नमो प्रेत अप्रेत देवे सो धर्मे नमो रोग हर्ता नमो राग रूपे नमो साह साहं नमो पूप पूपे नमो दान दाने नमो मान माने नमो रोग रोगे नमस्तं इसनानं नमो मंत्र मंत्रं नमो जंतर जंतरं नमो इष्ट इष्टे नमो तंत्र तंत्रं सदा सचदानंद सर्वं परणासी अनूपे अरूपे समस्तुल निवासी सदा सिद्ध दा बुद्ध दा बृद्ध करता अदो उर्द अर्दं अगं ओग हर्ता परम परम परमेश्वरं प्रोच पालं सदा सर्वदा सिद्ध दाता दयालं अशेदी अपेदी अनामं अकामं समस्त पराजी समस्तस्ततामं तेरा जूर चाचरी शांद जले हैं थले हैं अपीत हैं अपेय हैं प्रभु हैं अजू हैं अदेश हैं अपेश हैं पुजंग पर्यात छंद अगाधे अबाधे आनंदी स्वरूपे नमो सर्व माने समस्ति निदाने नमस्तवं निरनाथे नमस्तवं परमाथे नमस्तवं अगंजे नमस्तवं अपंजे नमस्तवं अकाले नमस्तवं अपाले नमो सर्व देशे नमो सर्व पेशे नमो राज राजे नमो साज साजे नमो साह साहे नमो माह माहे नमो गीत गीते नमो प्रीत प्रीते नमो रोख रोखे नमो सोख सोखे नमो सर्व रोगे नमो सर्व भोगे नमो सर्व जीतं नमो सर्व पीतं नमो सर्व ज्ञानं नमो परमतानं नमो सर्व मंत्रं नमो सर्व जंत्रं नमो सर्व दृश्यं नमो सर्व कृसं नमो सर्व रंगे त्रिपंगी अनंगे नमो जीव जीवं नमो बीज बीजे अखिजे अपिजे समस्तं प्रसिजे कृपालं स्वरूपे कुकर्मं परणासी सदा सर्वदा रिद्ध सिद्धं निवासी चरपट छांद त्वय प्रसाद अमृत कर्मे अमृत धर्मे अखल जोगे अचल भोगे अचल राजे अटल साजे अखल धर्मं अलख कर्मं सर्वं दाता सर्वं ज्ञाता सर्वं पाने सर्वं माने सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं भुगता सर्वं जुगता सर्वं देवं सर्वं पेवं सर्वं काले सर्वं पाले रुवाल छंद त्वय प्रसाद आद रूप अनाद मूरत अजोन पुरख अपार सर्व मान त्रिमान देव अपेव आद उदार सर्व पालक सर्व कालक सर्व को पुन काल जतर तत्र विराज ही अवधूत रूप रेसाल नाम ठाम ना जात जाकर रूप रंग न रेख आद पुरख उदार मूरत अजोन आद असेख देश और ना पेस जाकर रूप रेख ना राग जतर ततर दिशा विसा हुए फैल्यो अनुराग नाम काम बेहीन पेखत ताम हू नह जाहे सर्व मान सर्वतर मान सदैव मान तताहे एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक देव पेवना जान ही जेह बेद और कतेब रूप रंग ना जात पात सो जानई केह जेब तात मात ना जात जाकर जन्म मरण बेहीन चक्कर बकर फिरै चतर चक मान ही पुरतीन लोक चौदह के बिखै जग जापई जेह जाप आद देव अनाद मूरत थाप्यो सबै जेह थाप परम रूप पुनीत मूरत पूरन पुरख अपार सर्व विश्व रच्यो स्वयं भव गणन भंजन हार
कालहीन कला संयुगत अकाल पुरख आदेश धर्म धाम सो परम रहत अपूत अलख अपेस अंग राग नारंग जा कह जात पात ना नाम गर्भ गंजन दुष्ट भंजन मुक्त दायक काम आप रूप अमीक अन उस्तत एक पुरख अवधूत गर्भ गंजन सर्ब भंजन आद रूप असूत अंगहीन अपंग अनात्म एक पुरख अपार सर्ब लायक सर्ब कायक सर्ब को प्रतपार सर्ब गंता सर्ब हंता सर्ब ते अनपेख सर्ब शास्त्र ना जान ही जिह रूप रंग अर रेख परम वेद पुराण जा कह नेत भाखत नित कोट सिमृत पुराण शास्त्र ना आव ही वहो चित मद भार छंद त्व प्रसाद गुण गण उदार महिमा अपार आसन अपंग उपमा अनंग अनभव प्रकाश निस दिन अनास आ जान बाहु साहान साहु राजान राज पानान पान देवान देव उपमा महान इंद्रान इंद्र बालान बाल रंकान रंक कालान काल अनभूत अंग अबा अपंग गतमित अपार गुण गण उदार मुन गण प्रणाम निर्भय निकाम अत दुत प्रचंड मित गत अखंड अलिस्य कर्म अदृश्य धर्म सर्बा भर नाडै अन दंड बाडै चाचरी छंद त्वै प्रसाद गोबिंदे मुकंदे उदारे अपारे हरियंग करियंग निरनामे अकामे पुजंग पर्यात छंद चत्तर चक्कर करता चत्तर चक्कर हरता चत्तर चक्कर दाने चत्तर चक्कर जाने चत्तर चक्कर वर्ती चत्तर चक्कर भरती चत्तर चक्कर पाले चत्तर चक्कर काले चत्तर चक्कर पासे चत्तर चक्कर वासे चत्तर चक्कर मानिया चत्तर चक्कर दानिया चाचरी छंद ना सत्तरै ना मित्रै ना परमंग ना पितरै ना कर्मंग ना काय अजन्मंग अजाय ना चित्रै ना मित्रै परे है पवित्रै पृथिसै अदिसै अदृश्य अकृश्य भगवती छंद त्वै प्रसाद कथते के आ छिज देसै के आ भिज भेसै के आ गंज करमै के आ भंज भरमै के आ भिज लोकै के आ दित सोकै के अवधूत वरणै के विभूत करणै के राजंग प्रभा है के धर्मंग तुजा है के आ सूक वरणै के सर्बा अपरणै के जगतंग कृति है के छत्रंग छत्री है के ब्रह्मंग स्वरूपै के अनुभव अनुपै के आदि अदेव है के आप अपेव है के चित्रंग बेहीनै के एकै अधीनै के रोजी रजाकै रहीमै रिहाकै के पाक बेऐब है के गैबुल गैब है के अफवुल गुनाह है के साहान साह है के कारण कुनिंद है के रोजी देहांद है के राज करहीम है के कर्मंग करीम है के सर्बंग कली है के सर्बंग दली है के सर्बतर मान्या है के सर्बतर दान्या है के सर्बतर गौना है के सर्बतर पौना है के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर साजाय के सर्वतर दीनाय के सर्वतर लीनाय के सर्वतर जाहो के सर्वतर पाहो के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर कालाय के सर्वतर पालाय के सर्वतर हंता के सर्वतर गंता के सर्वतर पेखी के सर्वतर पेखी के सर्वतर काजाय के सर्वतर राजाय के सर्वतर सोखाय के सर्वतर पोखाय के सर्वतर तराणाय के सर्वतर प्राणाय के सर्वतर देसाय के सर्वतर पेशाय के सर्वतर मान्याय सदैवं प्रधान्याय के सर्वतर जाप्याय के सर्वतर थाप्याय के सर्वतर भान्याय के सर्वतर मान्याय
के सर्वतर इंद्राय के सर्वतर चंद्राय के सर्वं कलिमय के परमं फिहिमय के आकल अलामय के साहिब कलामय के हुसनुल वजू हैं तमामुल रुजू हैं हमेशुल सलामय सलीखत मुदामय गनीमुल सिकास्तय गरीबुल परस्तय बिलंदुल मकानय जमीनुल जमानय तमीजुल तमामय रजूअल निदानय हरीफुल अजीमय रजायक यकीनय अनेकुल तरंग हैं अपेद हैं अपंग हैं अजीजुल निवाज हैं गनीमुल खिराज हैं निरुकत स्वरूप हैं त्रिमुक्त विभूत हैं प्रभुगत प्रभा हैं सुजुगत सुधा हैं सदैवं स्वरूप हैं अपेदि अनूप हैं समस्त पराज हैं सदा सर्वसाज हैं समस्तुल सलाम हैं सदैवल अकाम हैं निर्बाध स्वरूप हैं अगाध हैं अनूप हैं ओं आदि रूपे अनाद स्वरूपय अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे त्रिवर्गं त्रिबाधे अगंजे अगाधे सुभं सर्वभागे सुसर्वा अनुरागय त्रिभुगत स्वरूप हैं अछिज हैं अछूत हैं किनरकं परनास हैं पृथ्वीउल प्रवास हैं निरुकत प्रभा हैं सदैवं सदा हैं विभुगत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं निरुकत सदा हैं विभुगत प्रभा हैं अनुकत स्वरूप हैं प्रजुगत अनूप हैं चाचरी छंद अपंग हैं अनंग हैं अपेख हैं अलेख हैं अपरम हैं अकर्म हैं अनाद हैं जुगाद हैं अजय हैं अभय हैं अपूत हैं अदूत हैं अनास हैं उदास हैं अतंद हैं अबंद हैं अभगत हैं विरक्त हैं अनास हैं प्रकाश हैं निचिंत हैं सुनिंत हैं अलेख हैं अदेख हैं अलेख हैं अपेख हैं अटाह हैं अगाह हैं असंभ हैं अगंभ हैं अनिल हैं अनाद हैं अनित हैं सुनित हैं अजात हैं अजाद हैं चरपट छंद त्वय प्रसाद सर्वं हंता सर्वं गंता सर्वं ख्याता सर्वं ज्ञाता सर्वं हर्ता सर्वं कर्ता सर्वं प्राणं सर्वं त्राणं सर्वं कर्मं सर्वं धर्मं सर्वं जुगता सर्वं मुक्ता रसावल छंद त्वय प्रसाद नमो नरक नासे सदैवं प्रकाशे अनंगं स्वरूपे अपंगं विभूते परमाथं परमाथे सदा सर्वसाथे अगाध स्वरूपे निर्बाध विभूते अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकामे निरपंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे ना पुत्रै ना सत्रै ना मित्रै ना तातै ना मातै ना जातै ना पातै निरसाकं सरीक हैं अमितो अमीक हैं सदैवं प्रभा हैं अजय हैं अजा हैं भगवती छंद त्वय प्रसाद के जाहर जहूर हैं के हाजर हजूर हैं हमेशुल सलाम हैं समस्तुल कलाम हैं के साहिब दिमाग हैं के हुसनल चिराग हैं के कामल करीम हैं के राज कर हीम हैं के रोजी देहांद हैं के राज कर हिंद हैं करीमुल कमाल हैं के हुसनुल जमाल हैं गनीमुल खिराज हैं गरीबुल निवाज हैं हरीफुल सिकान हैं हिरासुल फिकान हैं कलंकं परनास हैं समस्तुल निवास हैं अगंजुल गनीम हैं रजाय कर हीम हैं समस्तुल जुबा हैं के साहिब किरा हैं के नरकं परनास हैं बिहिस्तुल निवास हैं के सर्बुल गवान हैं हमेशुल रवान हैं तमामुल तमीज हैं समस्तुल अजीज हैं परं परम ईस हैं समस्तुल अदीस हैं अदेशुल अलेख हैं हमेशुल अपेख हैं जमीनुल जमा हैं अमीकुल इमा हैं करीमुल कमाल हैं के जुर्रत जमाल हैं के अचलं प्रकाश हैं के अमितो सुबास हैं
के अजब स्वरूप हैं, के अमितो बेपूत हैं, के अमितो पसा हैं, के आत्म प्रभा हैं, के अचलंग अनांग हैं, के अमितो अपांग हैं, मद पार छांद त्वय प्रसाद मुन मन प्रणाम गुण गान मुदाम अर बर अगंज हर नर परपंज अन गण प्रणाम मुन मन सलाम हर नर अखंड बर नर अमंड अनुभव अनास मुन मन प्रकाश गुण गण प्रणाम जल थल मुदाम अन छिज अंग आसन अपंग उपमा अपार गत मित उदार जल थल अमंड दिस विस अपंड जल थल महंत दिस विस बेअंत अनुभव अनास त्रित धर तुरास आ जान बाहु एक सदाहु ओंकार आदि कथनी अनाद खल खंड खयाल गुर बर अकाल घर घर प्रणाम चित चरण नाम अन छिज गात आजिज न बात अन झंझ गात अन रंज बात अन टुट भंडार अन थट अपार आ डीठ धर्म अत ढीठ कर्म अन बरन अनंत दाता महंत हर बोल मना छंद त्वय प्रसाद करुणालय है अर कालय है खल खंडन है मह मंडन है जगतेश्वर है परमेश्वर है कल कारण है सर्व उबारण है त्रित के तरण है जग के करण है मन मानिया है जग जानिया है सर्वं पर है सर्वं कर है सर्व पास्या है सर्व नास्या है करुणाकर है विश्वं पर है सर्वेश्वर है जगतेश्वर है ब्रह्मंडस है खाल खंडस है पर ते पर है करुणा कर है अजपा जप है अथपा थप है अकृता कृत है अमृता मृत है अमृता मृत है करुणा कृत है अकृता कृत है धरणी तृत है अमितेश्वर है परमेश्वर है अकृता कृत है अमृता मृत है अजबा कृत है अमृता मृत है नर नायक है खल कायक है विश्वंग पर है करुणालय है नृप नायक है सर्व पायक है भाव भंजन है अर गंजन है रिप तापन है जाप जापन है अकलंग कृत है सर्वा कृत है कर्ता कार है हरता हर है परमात्म है सर्व आत्म है आत्म बस है जस के जस है पुजंग प्रयात छंद नमो सूरज सूरजे नमो चंद्र चंद्रे नमो राज राजे नमो इंद्र इंद्रे नमो अंधकारे नमो तेज तेजे नमो बृंद बृंदे नमो बीज बीजे नमो राज संग ताम संग सांत रूपे नमो परम तत्तंग अतत्तंग स्वरूपे नमो जोग जोगे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो मंत्र मंत्रे नमो ध्यान ध्याने नमो युद्ध युद्धे नमो ज्ञान ज्ञाने नमो भोज भोजे नमो पान पाने नमो कलह कर्ता नमो सांत रूपे नमो इंद्र इंद्रे अनादंग बेपूते कलंकार रूपे अलंकार अलंके नमो आस आसे नमो बांक बंके अपंगी स्वरूपे अनंगी अनामे त्रिपंगी त्रिकाले अनंगी अकामे एक अक्षरी छंद अजय अलय अपय अभय अपू अजू अनास अकाश अगंज अपंज अलख अपख अकाल दयाल अलेख अपेख अनाम अकाम अगाह अटाह अनाथे परमाथे अजोनी अमोनी ना रागे ना रंगे ना रूपे ना रेखे अकर्मंग अपरमंग अगंजे अलेखे पुजंग प्रयात छंद नमस्तुल परनामे समस्तुल परनासे अगंजुल अनामे समस्तुल निवासे निरकामं बेपूते समस्तुल स्वरूपे कुकर्मं परनासी सुतर्मं बेपूते
सदा सचदानंद सतरंग परनासी करी मुल कुनिंदा समस्तुल निवासी अजायब विभूते गजायब गनीमे हरियंग करियंग करी मुल रहीमे चतर चक्कर वर्ते चतर चक्कर भुगते सोयंग भव सुबंग सर्वदा सर्व जुगते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे अपंगं बेपूते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वै प्रसाद सुवैये सरावग सुध समूह सिधान के देख फिरयो घर जोग जति के सूर सुरार्दन सुध सुधादिक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहयो मात को ना देखियत प्राण पति के श्री भगवान की पाए कृपा हूं ते एक रति बिन एक रति के माते मतांग जरे जर संग अनूप उतांग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से कूदत पौन के गौन कौ जात निवारे भारी पुजान के भूप भली बिद नियावत शीस ना जात बिचारे एते पय तो कहा पय भूपत अंत काओ नांगे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दिसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गूढ़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भविख पवान के भूपत कौन गणे नहीं जात बिचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिन अंत काओ अंत के धाम सिधारे तीर्थ नान दया दाम दान सो संजम नेम अनेक बिसेख वेद पुराण कतेब कुरान जमीन जमान सबान के पेख पौन आहार जति जत धार सबै सो बिचार हजारक देखै श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखै

ਸਥੂਲਾ ਸਭ ਪਰ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਫੂਲਾ ਸੰਤਨ ਦੁਖ ਪਾਏ ਤੇ ਦੁਖੀ ਸੁਖ ਪਾਏ ਸਾਧਨ ਕੇ ਸੁਖੀ ਏਕ ਏਕ ਕੀ ਪੀਰ ਪਛਾਨੈ ਘਟ ਘਟ ਕੇ ਪਟ ਪਟ ਕੀ ਜਾਨੈ ਜਬ ਉਦ ਕਰਖ ਕਰਾ ਕਰਤਾਰਾ ਪ੍ਰਜਾ ਧਰਤ ਤਬ ਦੇਹ ਅਪਾਰਾ ਜਬ ਆ ਕਰਖ ਕਰਤ ਹੋ ਕਬ ਹੂੰ ਤੁਮ ਮੈਂ ਮਿਲਤ ਦੇਹ ਧਾਰ ਸਭ ਹੂੰ ਜੇਤੇ ਬਦਨ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਭ ਧਾਰੈ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੂਝ ਉਚਾਰੈ ਤੁਮ ਸਭ ਹੀ ਤੇ ਰਹਿਤ ਨਿਰਾਲਮ ਜਾਨਤ ਬੇਦ ਭੇਦ ਅਰ ਆਲਮ ਨਿਰੰਕਾਰ ਨਿਰਿਭਕਾਰ ਨਿਰਲੰਬ ਆਦਿ ਅਨਿਲ ਅਨਾਦ ਅਸੰਭ ਤਾ ਕਾ ਮੂੜ ਉਚਾਰਤ ਭੇਦਾ ਜਾ ਕੋ ਭੇਵ ਨਾ ਪਾਵਤ ਬੇਦਾ ਤਾ ਕਉ ਕਰ ਪਾਹਨ ਅਨੁਮਾਨਤ ਮਹਾਮੂੜ ਕਛ ਭੇਦ ਨਾ ਜਾਨਤ ਮਹਾਦੇਵ ਕਉ ਕਹਿਤ ਸਦਾ ਸੇਵ ਨਿਰੰਕਾਰ ਕਾ ਚੀਨਤ ਨਹਿ ਭੇਵ ਆਪ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧ ਹੈ ਜੇਤੀ ਬਰਨਤ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤੁਹਿ ਤੇਤੀ ਤੁਮਰਾ ਲਖਾ ਨਾ ਜਾਏ ਪਸਾਰਾ ਕਿਹ ਬਿਦ ਸਜਾ ਪ੍ਰਥਮ ਸੰਸਾਰਾ ਏਕੈ ਰੂਪ ਅਨੂਪ ਸਰੂਪਾ ਰੰਕ ਭਯੋ ਰਾਵ ਕਹੀ ਭੂਪਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਸੇਤਜ ਕੀਨੀ ਉਤ ਭੁਜ ਖਾਨ ਬਹੁਰ ਰਚ ਦੀਨੀ ਕਹੂੰ ਫੂਲ ਰਾਜਾ ਹੁਵੈ ਬੈਠਾ ਕਹੂੰ ਸਿਮਟ ਭਯੋ ਸੰਕਰ ਇਕੈਠਾ ਸਿਗਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦਿਖਾਏ ਅਚੰ ਭਵ ਆਦਿ ਜੁਗਾਦ ਸਰੂਪ ਸਵਯੰ ਭਵ ਅਬਰਛਾ ਮੇਰੀ ਤੁਮ ਕਰੋ ਸਿੱਖਿਅ ਉਬਾਰ ਅਸਿੱਖਿਅ ਸੰਘਰੋ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਜਿਤੇ ਉਠਵਤ ਉਤਪਾਤਾ ਸਕਲ ਮਲੇਸ਼ ਕਰੋ ਰਾਨ ਘਾਤਾ ਜੇ ਅਸ ਧੁਜ ਤਵ ਸਰਣੀ ਪਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖਿਤ ਹੁਐ ਮਰੇ ਪੁਰਖ ਜਵਨ ਪਗ ਪਰੇ ਤਿਹਾਰੇ ਤਿਨ ਕੇ ਤੁਮ ਸੰਕਟ ਸਭ ਟਾਰੇ ਜੋ ਕਾਲ ਕੋ ਇਕ ਬਾਰ ਧਿਆ ਹੈ ਤਾ ਕੇ ਕਾਲ ਨਿਕਟ ਨਹਿ ਐ ਹੈ ਰੱਛਾ ਹੋਏ ਤਾਹੇ ਸਭ ਕਾਲਾ ਦੁਸ਼ਟ ਅਰਿਸ਼ਟ ਟਰੈ ਤਤਕਾਲਾ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਹੇ ਨਿਹਾਰਿਹੋ ਤਾ ਕੇ ਤਾਪ ਤਨਕ ਮਹਿ ਹਾਰਿਹੋ ਰਿੱਧ ਸਿੱਧ ਘਰ ਮੂੰਹ ਸਭ ਹੋਈ ਦੁਸ਼ਟ ਛਾਹ ਛੁਵੈ ਸਕੈ ਨਾ ਕੋਈ ਏਕ ਬਾਰ ਜਿਨ ਤੁਮੈ ਸੰਭਾਰਾ ਕਾਲ ਫਾਸਤੇ ਤਾਹੇ ਉਬਾਰਾ ਜਿਨ ਨਾਰ ਨਾਮ ਤਿਹਾਰੋ ਕਹਾ ਦਾਰਿਦ ਦੁਸ਼ਟ ਦੋਖ ਤੇ ਰਹਾ ਖੜਗ ਕੇਤ ਮੈਂ ਸਰਨ ਤਿਹਾਰੀ ਆਪ ਹਾਥ ਦੈ ਲਿਹੋ ਉਬਾਰੀ ਸਰਬ ਠਾਉਰ ਮੋਹ ਸਹਾਈ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖ ਤੇ ਲਿਹੋ ਬਚਾਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰੀ ਹਮ ਪਰ ਜਗ ਮਾਤਾ ਗ੍ਰੰਥ ਕਰਾ ਪੂਰਨ ਸੁਭ ਰਾਤਾ ਕਿਲ ਬਿਖ ਸਕਲ ਦੇਹ ਕੋ ਹਰਤਾ ਦੁਸ਼ਟ ਦੁਖੀ ਅਨ ਕੋ ਛੈ ਕਰਤਾ ਸ੍ਰੀ ਅਸ ਧੁਜ ਜਬ ਭਏ ਦਇਆਲਾ ਪੂਰਨ ਕਰਾ ਗ੍ਰੰਥ ਤਤਕਾਲਾ ਮਨ ਬਾਂਛਤ ਫਲ ਪਾਵੈ ਸੋਈ ਦੁਖ ਨਾ ਤਿਸੈ ਵਿਆਪਤ ਕੋਈ ਅਡਿਲ ਸੁਨੈ ਗੁੰਗ ਜੋ ਯਾਹੇ ਸੁਰਸਨਾ ਪਾਵਈ ਸੁਨੈ ਮੂੜ ਚਿਤ ਲਾਏ ਚਤੁਰਤਾ ਆਵਈ ਦੁਖ ਦਰਦ ਭਾਉ ਨਿਕਟਨਾ ਤਿਨ ਨਰ ਕੇ ਰਹੈ ਹੋ ਜੋ ਯਾ ਕੀ ਏਕ ਬਾਰ ਚਾਉ ਪਈ ਕੋ ਕਹੈ ਚਾਉ ਪਈ ਸੰਬਤ ਸਤਰਹਿ ਸਹਸ ਭਨਿਜੈ ਅਰਧ ਸਹਸ ਫੁਨ ਤੀਨ ਕਹਿਜੈ ਭਾਦਰਵ ਸੁਧੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਰਵੇ ਵਾਰਾ ਤੀਰਸ ਤੁਦਰਵ ਗ੍ਰੰਥ ਸੁਧਾਰਾ ਸੁਵਈਆ
पाए गहे जाबते तुमरे तबते को आंख तरे नहीं आन्यो राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सब बहु भेद कहे हम एक ना जान्यो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहियो सब तोहे बखान्यो दोहरा सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार सगल द्वार कौ छाड़ कै गहयो तुहारो द्वार बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुरता पाया सहज सेती मन वजिया वाधाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आईया शब्दोता गाव हो हरि केरा मन जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कार्य सब सवारना सबना गला समरथ स्वामी सो क्यों मनो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किछ है जिस देहे सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसया वाजे शब्द कनेरे कहे नानक सच्चे साहिब क्या नाही घर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वस्या जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विटा हो जिस दिया एह वडियाईया कह नानक सुनहो संत हो शब्द धरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित घर सभागै घर सभागै शब्द वाजे कला जित घर धारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित घर अनहद वाजे साची लिवै बिन देह निमानी देह निमानी लिवै बज हो क्या करे वेचारिया तुद बाज समरथ कोय नाही कृपा कर बनवारिया एस नाओ होर थाओ नाही शब्द लाग सवारिया कह नानक लिवै बज हो क्या करे वेचारिया आनंद आनंद सब को कह आनंद गुरु ते जानिया जानिया आनंद सदा गुर ते कृपा करे प्यारिया कर कृपा किल विख कटे ज्ञान अंजन सारिया अंदर हो जिन का मोह तुटा तिन का शब्द सच्चा सवारिया कह नानक एहो आनंद है आनंद गुरु आनंद गुर ते जानिया बाबा जिस तू देहे सोई जान पावै पावै ता सो जान देहे जिसनो होर क्या करहै विचारिया एक भरम भूले फिरहै दह दिस एक नाम लाग सवारिया गुर प्रसादी मन भया निर्मल जिन्ना भाणा पावै कह नानक जिस देहे प्यारे सोई जान पावे आवहु संत प्यारे हो अकथ की करह कहानी अकथ केरी केत दुवारै पाई है
तन मन धन सब सौप गुर कौ हुकम मन्या पाईऐ। हुकम मन्हो गुरु केरा गावहु सची बाणी। कह नानक सुनहु संतहु कथहु अकथ कहानी। ए मन चंचला चतुराई किनै ना पाया, चतुराई ना पाया किनै तू सुन मन मेरिया। ए माया मोहनी जिन एत भरम भुलाया, माया ता मोहनी तिनै कीती जिन ठगौली पाईआ। कुर्बान कीता तिसै विटहो जिन मोह मीठा लाया। कह नानक मन चंचल चतुराई किनै ना पाया। ए मन प्यारिया तू सदा सच संभाले, एहो कुटंब तू जे देखदा चलै नाही तेरै नाले। साथ तेरै चलै नाही तिस नाल क्यों चित लाईऐ, ऐसा काम मूले न कीचै। जित अंत पछोताईऐ सत गुरु का उपदेश सुन तू, होवै तेरै नाले। कह नानक मन प्यारे तू सदा सच संभाले, अगम अगोचरा तेरा अंत ना पाया, अंतो ना पाया किनै तेरा अपना आप तू जान हे। जी जंत सब खेल तेरा, क्या को आख वखान आए, आख है ता वेख है सब तू है। जिन जगत उपाया कह नानक तू सदा अगम है, तेरा अंत ना पाया। सुर नर मुन जन अमृत खोज दे, सो अमृत गुर ते पाया। पाया अमृत गुर कृपा किन्नी, सच्चा मन वसाया। जी जंत सब तुद उपाए, एक वेख परसन आया। लब लोभ अहंकार चुका, सत गुरु भला पाया। कह नानक जिसनो आप तुठा, तिन अमृत गुर ते पाया। भगता की चाल निराली, चाला निराली भगता केरी, बिखम मार्ग चलना। लब लोभ अहंकार तज त्रिसना, बहुत नाही बोलना। खन्याहो तिखी वाल हो निकी, एत मार्ग जाना। गुर प्रसादी जिनी आप तजिया, हर वासना समानी। कह नानक चाल भगता जुग हो जुग निराली, ज्यो तू चलाए हे तिव चलहै स्वामी। होर क्या जाना गुण तेरे, जिव तू चलाए हे तिवै चलहै जिना मार्ग पाव हे। कर कृपा जिन नाम लाए हे, से हर हर सदा त्याव हे। जिसनो कथा सुनाए हे अपनी, से गुरद्वारै सुख पाव हे। कहै नानक सच्चे साहिब ज्यो भावै तिवै चलाव हे। एहो सोहिला सबद सुहावा, सबदो सुहावा सदा सोहिला। सत गुरु सुनाया एहो तिन कै मन वसिया, जिन तुरहो लिखिया आया। एक फिर है कनेरे कर है गल्लां, गल्ली किनै ना पाया। कहै नानक सबद सोहिला सत गुरु सुनाया। पवित होए से जना जिनी हर त्याया, हर त्याया पवित होए। गुरमुख जिनी त्याया, गुरमुख जिनी त्याया पवित। माता पिता कुटंब सहत स्यो, पवित संगत सबाइया। कह दे पवित सुन दे पवित, से पवित जिनी मन वसाया। कहै नानक से पवित जिनी गुरमुख हर हर त्याया। करमी सहज ना उपजै, विन सहजै सहसा ना जाए। नह जाए सहसा कितै संजम रहे, कर्म कमाए सहसै जियो मलीन है। कित संजम धोता जाए, मन धोवहो शब्द लागहो। हर स्यो रहो चित लाए, कहै नानक गुर प्रसादी सहज उपजै। एह सहसा इव जाए, जियाहो मैले बहरहु निर्मल, बहरहु निर्मल जियाहो ता मैले। तिनी जन्म जुवै हारिया, एह तिसना वड्डा रोग लगा। मरण मनहु विसारिया,
वेदा मह नाम उत्तम सो सुन है नाही फिर है ज्यो बेता लिया। कह नानक जिन सच तजया कूड़े लागे तिनी जन्म जुआ हारिया। जियहु निर्मल बहर हो निर्मल बहर होता निर्मल जियहु निर्मल सतगुर ते करणी कमाणी कूड़ की सोए पहुचै नाही मनसा। कूड़ की सोए पहुचै नाही मनसा सच समाणी। जन्म रतन जिनी खटिया भले सेवन जारे कह नानक जिन मन निर्मल सदा रह है गुर नाले। जे को सिख गुरु सेती सनमुख होवै होवै ता सनमुख सिख कोई। जियहु रहै गुर नाले गुर के चरण हृदय त्याए अंतर आत्मै समाले। आप छड सदा रहै परनै गुर बिन अवर ना जाने कोए। कह नानक सुनहु संत हो सो सिख सनमुख होए। जे को गुर ते वे मुख होवै बिन सत गुर मुक्त ना पावै पावै मुक्त ना होर थै कोई। पुछो बिबेकी आ जाए अनेक जूनी भरम आवै बिन सत गुर मुक्त ना पाए। फिर मुक्त पाए लाग चरणी सत गुरु शब्द सुनाए। कह नानक विचार देखहो बिन सत गुर मुक्त ना पाए। आवहो सिख सत गुरु के प्यारे हो गावहो सच्ची बाणी। बाणी ता गावहो गुरु केरी बाणिया सिर बाणी। जिन कौ नदर कर्म होवै हृदय तिना समाणी। पीवहो अमृत सदा रहो हर रंग जपिहो सारिग पाणी। कह नानक सदा गावहो एह सच्ची बाणी। सत गुरु बिना होर कच्ची है बाणी। बाणी ता कच्ची सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी। कह दे कच्चे सुन दे कच्चे कच्ची आख वखाणी। हर हर नित कर है रसना कहया कछु ना जानी। चित जिन काहिर लया माया बोलन पए रवाणी। कह नानक सत गुरु बज हो होर कच्ची बाणी। गुर का शब्द रतन है हीरे जित जड़ाओ। शब्द रतन जित मन लागा एहो हुआ समाओ। शब्द सेती मन मिलिया सच्चा लाया भाओ। आपे हीरा रतन आपे जिसनो दे बुझाए। कह नानक शब्द रतन है हीरा जित जड़ाओ। सेव सकत आप उपाय कह करता पे हुक्म वरताए। आप वेखै गुरमुख किसै बुझाए। तोड़े बंधन होवै मुक्त शब्द मन वसाए। गुरमुख जिसनु आप करे सो होवै एकस स्यो लिव लाए। कह नानक आप करता आपे हुक्म बुझाए। सिमरित शास्त्र पुन पाप विचार दे। तत्तै सार ना जानी तत्तै सार ना जानी। गुरु बज हो तत्तै सार ना जानी। तिहि गुणी संसार भ्रम सुता सुत्या रैन विहानी। गुर कृपा ते से जन जागे जिन्ना हर मन वसिया बोलह अमृत बाणी। कह नानक सो तत् पाए जिसनो आन दिन हार लिव लागै जागत रैन विहानी। माता के उदर मह प्रतपाल करे सो क्यों मनहु विसारियै। मनहु क्यों विसारियै ए वडदाता जे अगन मह आहार पहुचावै। ओसनो केहो पोहे ना सकी जिसनो अपनी लिव लावै। अपनी लिव आपे लाए गुरमुख सदा संभालिया। कह नानक ए वडदाता सो क्यों मनहु विसारिया। जैसी अगन उदर मह तैसी बाहर माया। माया अगन सब इको जेही करता खेल रचाया। जा तिस भाणा ता जमया परवार भला पाया। लिव छुड़की लगी तृष्णा माया अमर वरताया।
एह माया जित हर विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया कहै नानक गुर प्रसादी जिना लिव लागी तिनी विचे माया पाया हर आप अमुलक है मुल ना पाया जाए मुल ना पाया जाए किसै विट हो रहे लोक विल लाए ऐसा सतगुर जे मिलै तिसनो सिर सौपियै विच हो आप जाए जिस दा जियो तिस मिल रहै हर वसै मन आए हर आप अमुलक है भाग तिना के नानका जिन हर पलै पाए हर रास मेरी मन वन जारा हर रास मेरी मन वन जारा सतगुर ते रास जानी हर हर नित जपे हो जिया हो लाहा खटे हो दिहाड़ी एहो धन तिना मिलिया जिन हर आपे भाणा कहे नानक हर रास मेरी मन हुआ वनजारा ए रसना तू अन रस राच रही तेरी प्यास ना जाए प्यास ना जाए हूरत किता जिचर हर रस पलै ना पाए हर रस पाए पलै पिया हर रस बहुड़ना तृष्णा लागै आए एहो हर रस करमी पाईऐ सतगुर मिलै जिस आए कहै नानक होर अन रस सब विसरे जा हर वसै मन आए ए शरीरा मेरिया हर तुम मह जोत रखी ता तू जग मह आया हर जोत रखी तुद विच ता तू जग मह आया हर आपे माता आपे पिता जिन जियो उपाए जगत दिखाया गुर प्रसादी बुझिया ता चलत हुआ चलत नदरी आया कहै नानक सृष्ट का मूल रचिया जोत राखी ता तू जग मह आया मन चाओ भया प्रभ आगम सुनिया हर मंगल गाओ सखी गृह मंदर बनिया हर गाओ मंगल नित सखिए सोग दुख ना व्यापए गुर चरण लागे दिन सुभागे अपना पिर जापए अनहत बाणी गुर शब्द जानी हर नाम हर रस भोगो कहै नानक प्रभ आप मिलिया करण कारण जोगो ए शरीरा मेरिया इस जग मह आए कै क्या तुद कर्म कमाया के कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग मह आया जिन हार तेरा रचन रचिया सो हार मन ना वसाया गुर प्रसादी हर मन वसिया पूर्व लिखिया पाया कहै नानक एहो शरीर परवान हुआ जिन सतगुर स्यो चित लाया ए नित रहो मेरे हो हर तुम मह जोत धरी हर बिन अवरना देखो कोई हर बिन अवरना देखो कोई नदरी हर निहालिया एहो विस संसार तुम देख दे एहो हर का रूप है हर रूप नदरी आया गुर प्रसादी बुझिया जा वेखा हर एक है हर बिन अवर ना कोई कहै नानक एह नेत्र अंध से सतगुर मिलिया दिब दृष्ट होई ए श्रवण हो मेरे हो साचै सुनै नो पठाए साचै सुनै नो पठाए शरीर लाए सुनहु सत बाणी जित सुनी मन तन हरिया हुआ रसना रस समाणी सच अलख वेडाणी ताकि गत कही ना जाए कहै नानक अमृत नाम सुनहु पवित्र हो वहो साचै सुनै नो पठाए हर जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया वजाया वाजा पौन नौ द्वारे प्रगट किए दसवा गुप्त रखाया गुरुद्वारे लाए भावनी इकना दसवा द्वार दिखाया तह अनेक रूप नाव नाव निद तिसदा अंत ना जाई पाया कहै नानक हर प्यारे जियो गुफा अंदर रख कै वाजा पवन वजाया एहो साचा सोहिला साचै घर गावहो ता सोहिला घर साचै जिथै सदा सच त्याव हे सचो त्याव
ਜਾ ਤੁਧ ਭਾਵ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੁਝਾਵ ਹੈ। ਇਹੋ ਸੱਚ ਸਭਨਾ ਕਾ ਖਸਮ ਹੈ ਜਿਸ ਬਖਸੇ ਸੋ ਜਾਣ ਪਾਵ ਹੈ। ਕਹੈ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸੋ ਹਿਲਾ ਸੱਚੈ ਘਰ ਗਾਵ ਹੈ। ਅਨੰਦ ਸੁਣੋ ਵਡ ਭਾਗੀ ਹੋ ਸਗਲ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਆ ਉਤਰੇ ਸਗਲ ਵਿਸੂਰੇ। ਦੁਖ ਰੋਗ ਸੰਤਾਪ ਉਤਰੇ ਸੁਣੀ ਸੱਚੀ ਬਾਣੀ ਸੰਤ ਸਾਜਨ ਭਏ ਸਰਸੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਤੇ ਜਾਣੀ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਾਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਸੁਣਤੇ ਪੁਨੀਤ ਕਹਿਤੇ ਪਵਿੱਤ ਸਤਿਗੁਰ ਰਹਿਆ ਭਾਰ ਪੂਰੇ। ਬਿਨਵੰਤ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਚਰਨ ਲਾਗੇ ਵਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤੁਧਿਆ ਗੈ ਅਰਦਾਸ ਮਮਾ।

0: अरदास एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतह है। श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुर नानक लई त्याए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासै हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नो सिमराओ श्री हर राय। श्री हर कृष्ण त्याई जिस डिठै सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरियाए घर नौ निध आवै ताए सब थाई होई सहाय। दसवें पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सब थाई होई सहाय। दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चाली मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्हां नाम जपिया वंड छकिया देग चलाई तेग वाही देख के अन दिठ कीता तिन्हां प्यारियां सचियारियां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत सीस दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुफाइयां चरखड़ियां ते चढ़े आरियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सुवासां नाल निभाही तिन्हां समूह शहीदां सिंघां दी पवित्र कमाई दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: पंजा तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान धर के बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी सरबत खालसा जी को वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्ब सुख होवै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रचिया रियायत देग तेग फतह बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: बख्शो जी सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान विवेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृत सर जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी
1: वाहिगुरु।
0: आप जी दे सिखां दा मान नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो समूह गुरद्वारियां गुरधामां जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान प्यारे खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान नितानियां दे तान नियोटियां दी ओट धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज आप जी दे पावन चरण कमला पास अरदास बेनती है आप जी दी कृपा दा सदका अमृत वेले तो लैके आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पांच बाणियां दे नित नेम संपूर्ण होए हन महाराज आप जी दे सेवकां पासों बाणी पढ़दियां तो हुईयां भुलां बख्श लैणियां अगे वास्ते सुमत बख्शिश करनी पढ़ी सुनी बाणी दा फला देश दर आई संगत दे हिरदियां ते वसाउणा दर आई संगत दी हाजरी तिल फुल भेटा अपने दर ते प्रवान करनी सब नू अपने दरो करो नाम दी दात गुरसिखां वाला जीवन चढ़दियां कला बख्शिश करके किरतार्थ करना संगतां दे सिर ते मेहर भरिया हथ रख के घरां विच सुख शांति वरतौनी आपस विच प्रेम इतफाक दी दात बख्शनी किरत कमाईयां विच बरकतां पौनियां कारोबारां विच वाधे बख्शिश करने शरीरक तौर ते तंदरुस्तियां बख्शिश करदिया होइआं अपने दर घर दे नाल इसे तरह जोड़ी रखना आप जी दी पवित्र हजूरी अंदर पंचामृत श्री कड़ाह प्रसाद जी दी देख सजा के हाजर है आप जी दे दर प्रवान होवे ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨਿਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਤੇ ਚੱਲਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਬਖਸ਼ੋ, ਸਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੇਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਿਲਿਆ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਚੇਤਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ।

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहो कुरसहो चटिया तुद डिठे सच्चे पाते साह मल जन्म जन्म दी कटिया सज्जन सच्चा पाते साह सिर साहा दैसाहो जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साहो।

नानक उदरे प्रभ सरनाई। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।

और नारगंधन जापनी हर तां के पारावा आप कराए साक्ती फिर आप कराए मार एक नगली जंजीरियां एक तुरी चढ़ा बिसार आप कराए करे आप हो कैसे हो करी पुकार नानक करना जिंदगी आप।

आगे हो। अमृत वेले तो लैके सजे होए दीवाना अंदर हाजरी भर दिया होया सरवण भगती कर रहे हो। वाहिगुरु गुरमंत्र दे जाप उस तो उपरंत आसा जी दी वार दे कीर्तन गुरु सवारियां पासों आप जी ने सरवण कीते हन। समा होया है चल रही लड़ीवार शब्द दी विचार दा मन चित बिरतियां नू एकागर करिए। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी गौड़ी बावन अखरी नाम दी बाणी अंदर अज दे इस 52वें श्लोक दे विच इस शब्द दे विच जो उपदेश सानू बख्शिश पै कर दे ने उस दे विचार कथा वार्ता आप जी दे समक्ष रखण दा निमाना जतन करन लगा हां। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह जी इस पावन शब्द दे अंदर सानू उस परिपूर्ण परमात्मा दे अगे अरदास करन दी जाच पै दस दे ने। जदों गुरु दे कोले आईए ते पल्ला अड के गुरु दे कोले किस तरह जाचना करनी चाहीदी है, गुरु दी सवली नदर दे असी पात्र बन सकीए, ओ केड़े शब्द अपनी जुबाने पाक तो कहने चाहीदे ने। धन गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह बख्शिश पै करदे ने। लेखै कत है ना छूटी है खिन खिन भूलन हार। हे मेरे वाहिगुरु साडे जीवां दी ए हालत है कि असी खिन खिन दे विच भुलण हारे हां ते जे तू साडियां इन्हां भुलां दी इन्हां गलतियां इन्हां गुनाहां दा हिसाब किताब करे इन्हां दी गिनती करे ते फिर असी कदे भी बख्शे नहीं जा सकते। लेखै कत है ना छूटी है, लेखै दा अर्थ हुंदा है हिसाब किताब करना गिनती मिनती करनी। असी किन्ने को गुनाह करदे हां किन्नियां को गलतियां करदे हां किन्ने को औगुणा दे नाल असी भरे होए हां इहदी कोई गिनती नहीं है। जेता समुंद सागर नीर भरिया तेते औगण हमारे। साडे अंदर इन्ने को औगण ने साडे अंदर इन्ने को गुनाह ने जिवें समुंदर पानी दे नाल लबालब भरिया होया है। हे मेरे वाहिगुरु इस तरह असी औगणा दे भरे होए हां गुनाहां दे नाल असी लबालब भरे होए हां
ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਣ ਹਾਰੇ ਹਾਂ।

गोबिंद हम ऐसे अपराधी, ये साडे अपराध ने, ये साडे औगण ने, ये साडियां गलतियां ने जिन्हां दी गिनती नहीं हो सकती। पार धन पार तान पार ती निंदा पर अपवाद ना झूठा, आवागमन होत है फुन फुन एहो प्रसंग ना टूटा। जदों इस पावन शब्द नूं पढ़ोगे, जिन्हां जिन्हां औगणां दे नाल असीं भरे हुए हां उन्हां सारे औगणां दी गिनती इहदे विच कीती गई। ते मैं अक्सर कहिंदा हुंना, इह जिहड़ियां गलतियां ने, इह जिहड़े गुनाह ने, इह जिहड़े साडे कोलों नेता प्रति अपराध हुंदे ने, कदे थोड़ा जिहा गौ नाल विचार करके वेखीए।

सो कहो टल गुर सेविया अहनिस सहज सुबाए दर्शन परसिया गुरु का जन्म मरण दुख जाए होवै सिफत खसाम दी नूर अरसहु कुरसहु चटिया।

सोग अगन तिस जन ना ब्याप सागर तरिया साधु संगे निरपौ नाम जपो हर रंगे पार धन दोख किच पाप ना फेड़े जम जंदार ना आवै नेड़े।

मन सहज भया हर पाया बलराम जियो गुरमुख मिलिया सुभाई हर मन तन मीठा लाया बलराम जियो हर मीठा लाया मेरे प्रब पहाया अन दिन हर लिव लाई मन चिंदिया फल पाया स्वामी हर नाम वजी वाधाई हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदय नाम विगासी जन नानक बोलै चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी हर प्रभ ठाकुर काज रचाया तन हिरदय नाम विगासी जन नानक बोलै चौथी लावै हर पाया प्रभ अवनासी। हां जी।

तेरी तुम मात पिता हम बारिक तुमरी कृपा मैं सुख कोई ना जानी तुमरा ऊचे ते ऊचा पग सगल समग्री तुमरा सूतर तुमते हो ए सो आग्या तुमरी गत मेत तुम ही नानक दास सदा कुरबानी वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। एक ओवंकार वाहिगुरु जी की फतह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमरक गुरु नानक लई ते आए फिर अंगत गुर ते अमरदास रामदास सिंह हुई सहाय अर्जन हर गोबिंद नू समराउ श्री हर आए श्री हर किशन ते आईया जिस डिठा सब दुख जाई तेग बहादुर सिमरिया घर नौन दयावै ताई सब थाई होए सहाय दसवें पातशाह गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी सब थाई होए सहाय दसां पातशाहियां दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे गुरु। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया देख चलाई तेग वाही देख के अन डिठ कीता तन्हा प्यारियां सच्यारियां दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। जिन्ना सिंगा सिंगणियां ने धर्म हे सिह दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लुहाइयां चरखड़ियां ते चढ़ियारियां नाल चिराए गए गुरद्वारियां दी सेवा लई कुरबानियां कीतियां धर्म नहीं हारिया सिखी केसां सवासां संग निभाही तना दी कमाई दा ध्यान तरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान तरके बोलो जी वाहे गुरु। प्रथमी सरबत खालसा जी की अरदास है सरबत खालसा जी कौ वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु। चिते आवै चेतावन का सदका सर्ब सुख हो वै जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छिया रियायत देग तेग फतह ब्रद की पैच पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाए खालसा जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु। सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत पत दा राखा वाहे गुरु। हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो श्री ननकाणा साहिब अते होर गुरद्वरे गुरधामा जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तन्हा दे खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नूं बख्शो। हे निमाणियां दे मान नितानियां दे तान नीओटियां दी ओट धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी आप जी दे पावन पवित्र चरणा विच अरदास है जी। ला खुशियां पातशाहियां जे सतगुर नदर करे आप जी दी हजूरी अंदर शुभ आनंद का लड़का भाई अजीत पाल सिंह पावा पिता सरदार जतिंदर पाल सिंह पावा ते माता मनप्रीत कौर जी पावा लड़की बीबा नवजोत कौर कख पिता सरदार गुरमेल सिंह कख अते माता बरिंदर जीत कौर जी कख तिन्हां दा शुभ आनंद कारज आप जी दी हजूरी अंदर गुरमर्यादा अनुसार संपूर्ण होए। लावां दा पाठ करदिआं कीर्तन करदिआं सेवा करदिआं आप जी दे दसरिआं पासों बेअंत भुल्लां बख्श देना कृपा करनी सुभाग भरी जोड़ी दे सिर ते मेहर भरिआ हथ रखना अंग संग हो के सहायता करनी
ਦੁੱਖਾਂ ਦਲਿੱਦਰਾਂ ਦੇ ਨਾਸ਼ ਕਰਨੇ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨੇ, ਪਰਸਪਰ ਪਿਆਰ ਇਤਫਾਕ ਦੀ ਦਾਤ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ਣਾ ਜੀ, ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਕਰਾਨੇ ਵਜੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁੰਦਰ ਪਛਾਕੇ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਾਏ, ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਸੇਵਕਾਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣੇ, ਸੇਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਆਈਆਂ, ਸੰਗਤਾਂ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭੇਟਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀਆਂ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦਾ ਭਾਵ ਸੰਗਤਾਂ ਅਤੇ ਸੁਭਾਗ ਭਰੀ ਜੋੜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ, ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਹਜ਼ੂਰ 6 ਪੌੜੀਆਂ ਅਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਣੀ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੜਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਦੇਗ ਸੱਜ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਰਤਾਰਥ ਕਰੋ।

अविनाशी जियन को दाता, सिमरत सब मल खोई, गुण निदान भगतन का बर्तन, बिरला पावै कोई। अविनाशी जियन को दाता, सिमरत सब मल खोई।

सब सुख दाता राम है दूसर नाहिन कोए, कौ नानक सुन रे मना तेह सिमरत गत होए। जेह सिमरत गत पाई है तेह भजरे तै मीत, कौ नानक सुन रे मना औद घटत है नीत। पांच तत् को तन रचियो जानो चतुर सुजान, जेह ते उपजो नानका लीन ताहे मैमान। घट घट मैं हर जू बसै संतन कहो पुकार, कहो नानक तेह भज मना भौ निध उतर है पार। सुख दुख जेह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान, कहो नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान। उस्तत निंदिया

मन हरख सोग जा कै नहीं बैरी मीत समान कौ नानक सुन रे मना मुक्त ताहे तै जान पै काहू को देत नह नह पै मान त्यान कौ नानक सुन रे मना ज्ञानी ताहे बखान जेहे

कहो नानक आपन तरै और न लेत उधार। ज्यों सुपना अर पेखना ऐसे जग को जान, इन मैं कछ साचो नहीं नानक बिन भगवान। निस दिन माया

कह नानक बिन हार भजन परत ताहे जम फंद जो सुख को चाहे सदा शरण राम की लेह कौ नानक सुन रे मना।

सुख में बहु संगी पहे, दुख में संग न कोए, कहो नानक हर भज मना अंत सहाई होए। जन्म जन्म परमत फिरियो, मिट्यो न जम को त्रास, कहो नानक हर भज मना निरभय पावे बास। जतन बहुत मैं कर रहियो, मिट्यो न मन को मान, दुर्मत स्यो नानक फदियो, राख ले हो पग

करणो हुतो सोना कियो परयो लोभ कै फंद, नानक समयो रम गयो अब क्यों रोवत अंध। मन माया मैं रम रहयो निकसत नाहि नमीत, नानक मूल

जेह घट सिमरन राम को सो नर मुक्ता जान तेह नर हर अंतर नहीं नानक साची मान एक भगत।

जात ते जो कुंचर इसनान सिर कंप्यो पग डग मगे नैन जोत ते हीन कहो नानक एह बिद पई तऊ न हर रसलीन निज कर देखियो जगत में को काहू को नाहे नानक थिर हर भगत है तेह राखो मन माहे जग रचना सब झूठ है जान ले हो रे मीत कह नानक थिर ना रह ज्यों बालू की पीत राम।

जो उपजो सो बिनस है परो आज कै काल, नानक हर गुण गाए ले छाड़ सगल जंजाल। दोहरा बल छुट क्यों बंधन परे कछु न होत उपाय, कहो नानक अब ओट हर गाज ज्यों हो सहाय। बल हो आ बंधन छुटे सब किछ होत उपाय, नानक सब किछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय। संग सखा सब

जेह सिमरत संकट मिटे दर्श तुहारो होए। राम नाम उर मैं गए जाके सम नहीं कोए। जेह सिमरत

उधारो। एह वस्त तजी न जाई, नित नित रख उरतारो। तम संसार चरण लग तरिए, सब नानक ब्रह्म पसारो। श्लोक महला पंजवां।

हर पाया, हर पाणा गुर पाया, गुर जावे हर प्रभ पास जियो, सतगुर करे हर पह बेनती, मेरी पैज रखो अरदास जियो, पैज रखो।

तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। दोहरा आग्या पई अकाल की तभी चलायो, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो, गुरु ग्रंथ जी मान्यो, प्रगट गुरां की जो प्रभ को मिल बोच है, खोज शब्द में।

को रहै रंग न तुंग फकीर, वारी आपो अपनी कोए न बंधै तीर। शेख हयाती जग न कोई थिर रहया, जिस आसन हम बैठे केते बैस गया। बिरखे हेठ सब जंत इकट्ठे एक तत्ते एक बोलन मिठे। अस्त उदोत भया उठ चले, ज्यों ज्यों औद विहानिया। सो कहो टल गुर सेविया, एहन इस सहज सुभाए। दर्शन परसे ऐ गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए। होवै सिफत खसम दी, नूर अरशों कुरसों चट्टी है। तुद डिठे सच्चे पातशाह,

पूरी पई सिमर सिमर बिधाता, साध संग नानक रंग माणिया, घर आया पूरा गुर आणिया, साध संग नानक रंग माणिया, घर आया पूरा गुर आणिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु की पावन हजूरी अंदर भाई साहब भाई मनिंदर पाल सिंह जी मंझ उन्हां दी अंतम अरदास विच शामिल होने लई एकत्र होई गुरु सवारी साध संगत जी। गुरु चरणा विच अरदास तो उपरंत सतगुरु पातशाह जी का पावन श्री मुख वाक आप जी ने सरवण किया है। इस तो पहला के कीर्तन शुरू होवे बेनती है कि जो भाई साहब जी दे बच्चे ने काका रवजोत सिंह उन्हां नूं नानका परिवार वालों जो साड़ी समाज की रीत मुताबक दस्तार भेंट की जाती है वड्डे सपुत्र नूं, सो नानका परिवार बच्चों का भाई मनिंदरपाल सिंह होरां दा सहुरा परिवार वो काका रवजोत सिंह होरां नूं दस्तार भेंट करनगे। सो नाल ही इस तो पहला के गुरु घर दे कीर्तनीए कीर्तन आरंभ करन आप सरबत संगत जितने भी माई भाई साग संबंधी परिवार दे इस दुख विच शरीक होने लई पहुंचे हो सारिआं दा कोटान कोटवार समुचे परिवार वालों धन्नवाद। सतगुरु रहमत करन परिवार नूं चढ़दी कला तंदुरुस्ती, बच्चों नूं दीर्घ आयु गुरसिखी जीवन बख्शिश करन। और संगत नूं एक होर बेनती है कि कड़ा प्रसाद बार काउंटर तो आप जी ने लेना है, तो प्रसाद लैण तो उपरंत गुरु के लंगर आप जी ने लंगर हाल में जाके जरूर लोड़ मुताबक छक के जाने की खेचल करनी दी। सतगुरु रहमत करन सारी संगत का कोटान कोटवार परिवार वालों धन्नवाद। सो गुरु रहमत करे बच्चों नूं आने वाले समय विच अपने परिवारक फर्ज निभाउण दा बल बख्शिश करे। बोले सो निहाल। आओ सतसंग जी हुण भाई साहब भाई सुखविंदर सिंह जी गुरद्वारा जामनी साहिब वजीदपुर फिरोजपुर वाले आप जी नूं गुरबाणी कीर्तन द्वारा गुरु चरणा नाल जोड़नगे। जिहड़ी संगत ने बैठ के कीर्तन सरवण करना इसे तरह आप जी ने कीर्तन सरवण करना, और जिहड़ी संगत ने जाना है बाहरों आप जी प्रसाद लैके गुरु के लंगर विच प्रसाद छक के फिर जाना जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।

जे को पुंचे तिसका होए उदारो। ए हवस्त तजी नह जाई नित नित रख उर तारो। तम संसार चरण लग तरिया।

मेरे स्वामी, मैं तुद आगे अरदास, मैं होर थाओ नाही जिस पह करों बेनंती, मेरा दुख सुख तुझ ही पास। सो कहो टल गुर सेवी है एहनिस सहज सुभाए, दर्शन परसे है गुरु कै, जन्म मरण दुख जाए।